ती बेला मैचन की गर्दयोलिन पीढ़ीमा बसेर के कुरा गर्दियो कहिले।